0: ಇದುವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45 ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ಸಮಯ 8:00 ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರಭಾತ್. 8:15 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे. आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया. भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें

0: रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशे मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
7: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभलें तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
10: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
9: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honour of her Cyprus counterpart Nikos Christodoulidis and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
9: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
11: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
9: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honoured with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
12: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honour. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
9: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
13: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
14: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक-एक करके हो गई बात। और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
9: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
15: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
9: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night, chasing a massive target of 256 runs. Set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
16: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. six-packs boost trade security ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Put In Meat, A New Axis in the Making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
9: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
17: Samaya Suryagi, 8 gante 30 nimishagalu. Akashavani, Mysore. Na Kasturi avara Pataladalli Papachi, Makkala Sahitya Kritiya Banuli Bodo. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ಎಸ್.
18: ಕಡೆಗೆ ಹುಳು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಅಂತ ಹಠ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಿರಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಳು. ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಳು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿತು. ಪಾಪಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ರೇಗಿತು. ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡ ಅಡ್ಡ ಮಾತು. ಇರಲಿ, ಈಗಿರೋ ಎತ್ತರ ಸಾಕೆ ಎಂದು ಹುಳು ಕೇಳಿತು. ಪಾಪಚ್ಚಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತಳು. ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಳು ತನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆಯಾಯಿತು.
19: ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೊಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಮೂರಂಗುಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ಲು.
18: ಏಕೆ, ಮೂರಂಗುಲ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತರವಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಎತ್ತರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹುಳು ನೆಟ್ಟನೆ ಅಣಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಹೌದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರಂಗುಲ. ಆಗ ಪಾಪಚ್ಚಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹ್ಞೂ, ನಿಮಗೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹುಳು ಗುಡಿಗುಡಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಆ ಕಳಿಸಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮೈ ಮುರಿದು ನಾಯಿ ಕೊಡೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿದು ಸರಸರನೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಪಾಪಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಥೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇಲಿಯ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒದ್ದಾಡಿದಳು. ಕಡೆಗೂ ಉಪಾಯ ಹೇಳದೆ ಹುಳು ಹೊರಟೇ ಹೋಯಿತು. ಶನಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಂದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿಂದರೆ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂದು ಅವಳು ಯೋಚಿಸುವುದರೊಳಗೆ, ಅಣಬೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂದು ಹುಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿತು. ಪಾಪಚ್ಚಿ ಅಣಬೆಯನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಳು. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿಂದರೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ತಿಂದರೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವಳ ಊಹೆ. ಅದು ಛತ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ಗುಂಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ, ಒಂದೇ ದಪ್ಪ. ಅಂತೂ ಅವಳು ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಂತು ಎರಡು ಚೂರು ಮುರಿದುಕೊಂಡಳು. ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೂರನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಚ್ಚಿದಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳ ಗಲ್ಲವು ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ನೆಲಸಮವಾದರೆ ಏನು ಗತಿ? ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೂರನ್ನು ಕೊಂಚ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಮನಗಂಡಳು. ಜಾಣೆ, ಆದರೆ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅಣಬೆಯ ಚೂರನ್ನು ಒಳಗೆ ತುರುಕುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ತಿಂದಳು. ಅಬ್ಬಾ, ಕೊಂಚ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಳು. ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನೀಲಿಯ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಕಾಣಿಸಿತು. ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವಳ ತೋಳುಗಳ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಬರಿಯ ಒಂದು ಹಸಿರು ಚಾಪೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಗೋಳಾಡಿದಳು. ಕೈಗಳನ್ನು ಬೀಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಲಾಡಿದುವು ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನು ನಿಂತಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಳ ಕತ್ತು ಬಹಳ ನೀಳವಾಗಿತ್ತು, ತಲೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಂತಿತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಕ್ಕಿ ಅವಳ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೈದು ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿಡಿಸತೊಡಗಿತು. ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಪರಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವೆಂದು ಅದು ಪಾಪಚ್ಚಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾವು, ಹಾವು ಎಂದು ಅರಿಚಿಕೊಂಡಿತು. ನಾನು ಹಾವಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮರಗಳ ಹೊದರುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಲಿಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಮರದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾದ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದೆಯ ಮಾರಿ ಎಂದು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಶಪಿಸಿತು. ಹಾಗನ್ನಬೇಡಿ, ನಾನು ಹಾವಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಆರಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಅವತಾರ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿತು. ಅದಿರಲಿ, ನನ್ನ ಗೂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಏಕೆ ಬಂದೆ? ದೂರ ಹೋಗು, ತೊಲಗು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿತು. ಪಾಪಚ್ಚಿ ಕೊಂಚ ದೂರ ಸರಿದಳು. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಾಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಳು. ಅನಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಚೂರಿನಿಂದಲೂ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಹಿರಿದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. ಪಾಪಚ್ಚಿಯಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದವಳಾದಳು. ಅಬ್ಬಾ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಚೂರುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಆಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಎತ್ತರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶಾಮು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಚೂರು ತಿನ್ನಿಸಿ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಆ ಹೂದೋಟವನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದಳು. ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲುದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಂಗಲೆ, ಮೊಲದ ಮನೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೆನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ನಾನು ಈ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ನನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣಬೆಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಕೊಂಚ ತಿಂದು ಒಂದು ಗೇಣೆ ತೆರೆದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಳು. ಯಾವನೋ ಜವಾನ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದನು. ಅವನ ಮುಖವು ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದೇ ಉಡುಪಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜವಾನ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದನು. ಇವನ ಮುಖ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯ ಹಾಗೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದಳು. ಮೀನು ಮುಖದವನು ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಪ್ಪೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಚೆಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕಪ್ಪೆ ಜವಾನನು ಅದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ, ಚೆಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಆದರದಿಂದ ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಡಿಯೂರಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಂಪು ರುಮಾಲುಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚಿ ಹೋದುವು. ಪಾಪಚ್ಚಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ನಗು. ಕೊಂಚ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಜವಾನ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಕಪ್ಪೆ ಮೂತಿಯವನು ಮಾತ್ರ ಹೊಸಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು.
19: ಜವಾನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು.
18: ಪಾಪಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಬಾಗಿಲು ಎಂದಳು. ಜವಾನ ಕಣ್ತೆರೆದನು.
19: ಜವಾನರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ
18: ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು. ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗ್ತೀರಿ? ಗಂಟಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜವಾನ ಎನ್ನುವ ಪಿಂಡ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ ದೆವ್ವದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋರು ಯಾರು? ಒಳಗಿನ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ್ರೂ ಒಳಗಿರೋವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೌದು, ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳು ಕಲೆತು ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕೂಗು, ರೇಗು, ಅಳು, ಬೈಗುಳು, ಆರ್ಭಟ, ಕೆಮ್ಮುಲು, ಸೀನು, ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಪ್ಪೆ, ನಾನು ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು.
19: ಮನೆಯ ಜವಾನನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನೆಯವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೂ ಇವನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡುವೆ
18: ಎಂದು ಪಾಪಚ್ಚಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಜವಾನನನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡೋಣವೆನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಕಪ್ಪೆ ಕಣ್ತೆರೆದು, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಯಾರೋ ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆದ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಂಚ ದೂರವಾಗಿ ಬಿತ್ತು.
19: ಥೂ, ಇವನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೂಕಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು.
17: ನ ನಾ ಕಸ್ತೂರಿಯವರ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಬಾನುಲಿ ಓದನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ಎಸ್.

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गाँव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन,
उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे

विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी, और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा, और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स
रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी

बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लंबर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लंबर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत

0: अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से हैं, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से हैं। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ರಸಾನುಭವ, ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಡಿಸಲಿದೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಕೈತುತ್ತು. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯ ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ FM 100.6 ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ.
1: ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೇ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ನಾಟಕ ಜೀವನ್ಮುಖಿ.
2: ನನ್ನ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮಗು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರೋ ಮಗು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
3: ಛೇ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸತ್ತೋದ ಮಗುನ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ?
2: ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೋಳಲ್ವ ನಾನು. ಇನ್ನು ಸತ್ತ ಮಗುನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮ.
1: ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ, ಇದೇ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಜೀವನ್ಮುಖಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಂಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳಬಹುದು.
4: ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸೊ ಈ ಸುಮಾರು ಜನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
1: ಮರೆಯದೇ ಕೇಳಿ, ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಂಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
5: ಹಾಯ್ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀನಗರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ.
6: ಒಂದ್ಸಲ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಜೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಕಾಂದಾಲ್ಪಾಡೆಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಊರಿನ ಸದ್ದುಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ರೈಲು ದೂರವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರವಾಯಿತು.
5: ತಪ್ಪದೆ ಆಲಿಸಿ, ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ.
1: ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ, ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಯುವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮೈಸೂರಿನ ದಿಶಾ ರಮೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳುವಿರಿ.
7: ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌರಭ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅದೇ ಸಂಜೀವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಅವರು ಒಂದು SLV ಸಿರಿ ಲಂಬೋದರ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ 25-30 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ.
8: ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮೀಟು,
9: ಜೋಡಿ ಆಯ್ತು ಮನ್ಸಲೀಗ ಹಾಡು ಬೀಟು,
8: ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗೀಟು, ದಾಟಿ ಆಯ್ತು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು.
1: ಕೇಳಿ, ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
10: ಕೇಳುಗರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಚಿಕೇತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100.6, ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು.
11: This is Akashwani and I am Naresh Mago with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundi Bugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
12: Karma Yogi Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai iska jyada se jyada labh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein apni pehchan bana raha hai. Yahi spirit, yahi urja public service mein bhi dikhai deni chahiye. Viksit Bharat aise hi yuvaon ke prayas se banega jo apne kaam ko desh seva ka madhyam mante hain.
11: Mr. Modi highlighted that the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
12: Duniya भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
11: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
12: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है, और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
11: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress, and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
13: रेलवे में आज करीब करीब एक लाख
14: वर्क इज करंटली अंडर वे फॉर अप्रोक्सिमेटली 1,60,000 रिक्रूटमेंट्स. यू मस्ट बी अवेयर दैट प्रीवियसली रिक्रूटमेंट यूज्ड टू कम आउट वंस एवरी 8 to 10 ईयर्स और वंस एवरी 4 to 5 ईयर्स. दैट वॉज द एरा ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द यूपीए. व्हेन मोदी जी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंप्रेस्ड दैट टाइम एंड आफ्टर दैट सम टाइम अगो एन एनुअल कैलेंडर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड अ क्लियरली डिफाइंड टाइम टेबल वॉज मेड.
13: एनुअल कैलेंडर की व्यवस्था की.
11: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
15: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए. मोर देन 5 lakh यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर्स क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स. India is preparing our young people to provide leadership in that area.
11: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, L. Murugan, has said that the government is committed to realizing the vision of Vikasit Bharat by 2047. Addressing the Rozgar Mela at ICF Chennai, he said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is witnessing rapid growth in infrastructure, digitization, employment opportunities, and ease of doing business. Dr. Murugan said that the centre has so far provided 12 lakh jobs, fulfilling the assurance given by the Prime Minister. He said the government's success is driven by the mantra of reform, perform, and transform. He urged the citizens to stay informed about various welfare schemes and programs of the government. We spoke to some of the beneficiaries who were given appointment letters at today's Rozgar Mela.
16: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh. And I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
17: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work but a service to the nation.
18: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
11: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Bihar government has announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu, a flour made from dry roasted pulses and cereals for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
19: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
12: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
19: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
12: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
19: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
12: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
19: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
20: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
19: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
19: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
21: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
19: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
19: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः
1: ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नवनियुक्ति पत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पंचवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे एबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटम् राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्च स्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मन्त्रालये, गृह मन्त्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, उच्च शिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिक कार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी

0: पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलितं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
0: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-2000 भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान पदाधिकारिणः आईजीओटी इति कर्मयोगी मंचस्य सम्यक लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्री मोदी विश्वास प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं यत्र 11,000+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्री वैष्णव सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेल विभागे 60,000+ नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् 4 कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाब राज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु 29वं आजीविका मेलकम् आयोजितं यत्र 81,209 लाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते आरसीएफ संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वाष्प ईंधन मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रीय संस्थान रूपेण परिवर्तितम् अस्ति, यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। शिक्षा विभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशने मुख्यमंत्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 20,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः सुनिश्चिता भवेत्। सः अवदत् यत् नियुक्तिप्रक्रियां सुगमां कर्तुं शिक्षकनियुक्तेः अधिसूचना इदानीं प्रतिवर्षं जुलाई मासे एव प्रसारयिष्यते। अवधेयं यत् शिक्षामंत्री मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमंत्रिणः अनया घोषणया शिक्षकनियुक्तिपरीक्षायाः चतुर्थचरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सूचितवान् यत् शिक्षा विभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्यांकनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। पूर्वम् एषा तिथिः अद्य यावत् आसीत्। CBSE इत्यनेन उक्तं यत् गतदिनेभ्यः जालपुटे अभूतपूर्व परिचालन भारस्य तथा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली

0: भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को

0: I'm Shreya, a second year student. Our next program is a story presentation by Sanvi of first year. The story is in Hindi with the title Gyan Ka Sagar. This story highlights the fact that true greatness comes from humility and not from wealth or status. To gain knowledge, one has to bow down to the preceptor. Being humble and disciplined, a person will be respected in the society. Now let us listen to the story narrated by Sanvi.
1: नमस्कार साथियों, बुद्ध ने कहा है, धैर्य सबसे बड़ा तप है और अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति। इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति या पद से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह कितना धैर्यवान है, कितना अनुशासित है और नई बातें सीखने के लिए कितना विनम्र है। कोई भी काम तुरंत नहीं होता, उसे समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो हमें जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करेगी, ज्ञान का सागर। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, यह बताओ पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरना ऊंचाई से गिरता है, अतः पानी झरने के नीचे जाकर ही पिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना हो तो झरने को ऊंचाई से बहना होगा। आनंद ने हाँ उत्तर दिया। यह सुनकर भगवान बोले, आनंद ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना हो तो स्वयं को नीचा लाकर ही प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो तुम एक ऐसे सागर

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.